एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वट है। एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घुमण लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घुमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घुम रहे है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा। ओ जहर शिवजी भगवान नूं पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार करदे हां, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिदा है, ता आनंद और समझ पूरी आंदी है। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया, रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत

ते अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत नहीं पै सकदी। और इस गल नूं धन गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी द्वारा आ बयान कीता। हौण ताड़ी वे कारे कारे लाया ताड़ी कहंदे नी कीर्तन करन वाला। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौण ताड़ी वेकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उहदा कीर्तन करन वाला पर मैं वेला सी। कारे कहंदे ने कम

साहब को बात। गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हर गोविंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद कराई।

सुतकंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ चला मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बे को साजा अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती गुरु साहिबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहिब जी पुछदे ने ऐ सूरत तू कौन है उस सूरत बोली मैं खालसा गुरु साहिब जी पुछदे ने तू कित्थों आई है उस सूरत बोली मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो जो चाहिदा सी ओ मिल गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए पर सोचन लगे ए सूरत बड़ी सोहनी पर किन्नू दया मसंदा नू पंडतां नू साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दया ए सूरत क्योंकि जे आप दुध लैन जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके ले जाने जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए नहीं, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुटिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकदा। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकदा? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगण लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता ते कलगी तर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तेनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है।

पंडितों की प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खान दे नाल सोने दिया मोहरा ज्यादा मिलनिया ने, ए सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हां ने सादा लंगर खाधा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्हां ने मास वाला लंगर खाधा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी।

जदों दोबारा गया मैनू एक सिर दी लोड़ है। हर पासे सहम छा गया ते एक ही हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी वारी सिर मंगया तां भाई दया राम उठे, हाथ जोड़ के कहन लगे, महाराज मेरा सिर हाजर है। दया राम नूं बाहों फड़िया, तंबू च लै गए, कृपान मारी, सिर वड्या। लहू नाल भरी हुई कृपान लै के जदों साहब जी वापस आए, लहू भरी कृपान देख के जिहड़े बैठे सन ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ

हर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दा तो नित ही पै रही हन असी सुनिया अनसुनिया कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा होंदा है कोई अर्थी जा रही होंदी है ओ सानू चेता करा रहा होंदा है ए मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदड़े दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों के है कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है वो केड़ी आउंदी है जदों असी सौ जांदे हां तां मौत वी खाली दे जांदी है दस जांदी है ए मनुख एक दिन सौवन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा सवेगा कि कोई तैनू उठा ल ना सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए ता इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नू नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान ता मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उथे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिवें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करदे सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नू अमृत वेले भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे ता फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है ता अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताके तेरा जीवन सफल हो जावे तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हन ए सदा कह रही हन भाई सदनहारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दा कल्या होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कल्या होया आउंदा है जेड़ा किसे दा भेजिया होया आउंदा है ओ कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई कम करन लई आउंदा है ते अकाल पुरख वाहेगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजा है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तेनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ए एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख चौरासी परम दिया दुर्लभ जन्म पायो एक दस बंदियां दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी चौरासी लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिणीए ता कई जूना विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तेनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख चौरासी
84 lakh ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਬੂਆ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂੜੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸਦੇਵ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਮੂੜੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

शरीर दे नाल चोज करदे जो मृतक मिथ्या शिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखां वल भजदे चाहना है कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तावी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारा नूं ही चेते करके तू जप लैंदा, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है, आख्या तिन्ना मुख डरावने जिन्हां विसारियो नाऊ, एथे दुख घनेरिया अगे ठोर ना थाऊ, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए, नानक जो मथन माधानिया त्यों मथे धर्म रहे, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करता, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

सारा दिन स्न रहन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहे कबीर नर्त से त्यावो बावरे आ संसार। हे नर, उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवी बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउण दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है? इस मन नाल? शैब कहिंदे ने भी तेरा नहीं। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। इस तन नाल? ए भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही ऐसे गल है, कहने तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत साहब कहते ने, हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ तो है ही परमात्मा दा है, तू कि पूजा कर रहे हैं? तेरी पूजा किवें हो सकती है? क्योंकि सब कुछ तो दिता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नु तनना मिलदा ते मनना हुंदा, जे तन ते मनना हुंदा, तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दिता है ते असी तन कमाया है। जे परमात्मा तन ही ना देंदा, तन कित्थों हुंदा? इसलिए साहिबां ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई ये गुरु नूं दे दे, जदों ये गुरु नूं दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा फिर तू परमात्मा नूं पा सकने, फिर ओदी पूजा कर सकने। इस तों बिना पूजा नहीं हो सकती। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर चरणा पूजना, बिना गुरु दे चरणा तो पूजा सब कूड़ सुवाओ। सारे मनोरथ सब झूठ हन कूड़ हन। आरंभता पहले दिन इसे ही गलत होई सी कि हरि दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है। ते इत्थे भी सतगुरु ने उपदेश यही दिता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल ते बड़े ख्याल नाल साडी चोली पा के कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु दे चरणा तो बिना किसे होर नूं ध्याउंदा है भाई साहब कुछ झूठ है, सच नहीं है।

सब हैं संतो, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हे संत जनो, हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान।

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा ओ पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहना नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगटावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगटावा ना करे, सेवा लगा रवे, सेवा लगा रवे। जो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तू पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करने वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

जिम बुलावे तुम बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी तन गुरु नानक देव जियो महाराज गुरु नानक पद पंकज बंदन गुरु नानक पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख नकंदन अमरदास।

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जा मैं अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधार।

0: अवतार साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तप स्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई अपनी हाजियां लगवाउन दे लई सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रही हैं। साहबजादे बाबा जीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी माता गुजर कौर यहां दे 300 साल दिहाड़े संगतां मना रही हैं। ये कितने दिहाड़े इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां। वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तो भी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन साधकी महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है इतनी अगाध है जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन बेअंत बेअंत जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां उस दे विच अभेद हो गईयां जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई जोत जोत दे विच मिल गई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए उन्हां दी महिमा बेअंत है क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम परमेश्वर दा रूप हो गए जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां साध की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा एक सिवन कोई नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब के अंदर गुरु महाराज जी ने सात संगत वर्णन किया बड़ी महिमा वर्णन की है। आओ ऐसे ही महापुरुषों की पवित्र याद विच बैठे हां जिन्हां ते यह लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम वज वज के तिना हिस्सों के विच बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो अपनी हाजरी लगवाया करो

0: 지운데. ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, सृष्टि का करता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ए सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकते फिरते हाँ। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरते हाँ। अनेक तरह के दुखां सुखां दे विच फसे हुए हाँ। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हाँ। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभाव साधु सुभाव सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी सिक्ख्या दे के बाबा जस्सा सिंह जी दे जीवन नूं ए सी गुरमुख दी कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करन वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसदे ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसदे कन्न भर दित्ते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घर वाली तेरी कदे ख्याल रखिया? वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्ष्या दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण ओह कित्थे मंनदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो जबरदस्ती। हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण? किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारां ने नाम दी दाल दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनू इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी, साह संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साह संग कमजोर हो गई, तुरिया नहीं साह संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच। बोलो सिमरन देव, जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साह सुन पिता जी सोचदे हन की करिए? बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालके नूं अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालके नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां भाई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: इह बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों भाई तैयार है? फिर इह लाइन बड़ी औखी है, इह फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशां ने कहना कीता भाई गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

कैसे भिटे गुरु बाबे फिट कैसे भिटे गुर अंगद की ते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौथी

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोड़ी राम मेरी मत थोड़ी राम हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तू

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रित तारन, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास कर क्यों प्रकाशा।

सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां अपने वालों तो असी सही ही जींदे पर गुरु बाबा जी दी ऑब्जर्वेशन साडे जीवन दे प्रति ए है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हां फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हां, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हां, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता। तो कितनी वड्डी गल है, और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता। जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आंदा की? फिर इसका अर्थ ए होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की बिद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा? फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक दे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ए सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ए डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आंदा, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आंदा है। तो फिर असी किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती? गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन नू हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नू, ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखदी है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं,
बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है आप आशा जी बात सुन दो, मैं आपने फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज भी मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी एक दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी एक दफा ये गल सुनन नू मिली है, कितनी एक दफा ये गल ही सुनन नू मिली है, कितनी एक दफा किसी ने एक पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नू नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नू असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो आज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र सुनो।

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे नू दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो पर्सनल नीड्स जब पूरी नहीं होंगे तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता,

इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखते हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान के रोगों का इलाज कर ली, इतने बड़े बड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी के नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आख दे जीना नहीं है। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह, दसो फिर किवें नहीं जीना आ गया? असं तो सोचते अं बड़ी तरक्की कर गए, अस डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखते जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

राजे, इको ऐसे राजे जो 300 साल पहलो भी तक ते बैठे सन ते आज भी बैठे हैं। इको ही राजे जिन्हां उत्ते 300 साल पहलो भी शतर चल रहे सन ते आज भी चल रहे हैं। ओ राजे हन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।